29 सवादों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ फजाना 87.1 FM की टीम की जानिब से तमाम 29 सवादों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: The festival of sacrifice and devotion is here. Eid ul Adha Mubarak from all of us at Faza 97.1 FM and app.

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: कुर्बानी, मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ ईद उल अज़हा मनाएं। रेडियो फिजा की जानिब से आपको ईद मुबारक।

इससे खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसे जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक। तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ। सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are...
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM.
15: ईद के रंग मोहब्बतों के संग, फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

यार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है। मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती। ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: उत्सव घर आनंदमय हार्टवार्मिंग आनंद एक

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डेप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डेप।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: ईद अलादा मुबारक। मे योर डेज बी फिल्ड विद पीस, जॉय एंड ब्लेसिंग्स। रेडियो फाजा 97.1 FM।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: ईद अल अज़हा मुबारक, विशिंग यू पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड एंडलेस ब्लेसिंग्स। रेडियो फाज़ा 97.1 FM।

0: अरे वाह, ईद आई है और मेरी बहन क्या सोच रही है?
1: बस यही कि इस ईद पे कुछ अलग हो जाए।
0: अच्छा, मगर क्या?
1: वही तो, ईद कैसे मनाएं?

0: इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज यही है।
1: छोटे भाई यार, तुमसे ज्यादा ही थी तो हमने जमा कर ली।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक। तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: मेरा भाई। ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजान आईडी 7.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियां। फजान आईडी 7.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।
1: ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियां हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Celebrate Eid al-Adha with grace and gratitude. Good vibes, great blessings. Eid al-Adha Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210792।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing. Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
14: कुर्बानी सिर्फ
15: ईद के रंग, मोहब्बतों के संग। फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डेप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डेप।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड ऐप, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Eat a lot of blessings to you and your family. Radio Fuzz 97.1 FM.

0: करना ना भूलें।
1: बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैप पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैप।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
4: यूनिटी, सैक्रिफाइस, सेलिब्रेशन, ईद अल अधा मुबारक, ओनली ऑन रेडियो फाजा 97.1 FM।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसे जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

0: की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस सीध हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।
1: नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें, अपनों के साथ मिलकर खुशियाँ बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेप, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजाना 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजाना 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

जी तो रेडियो फिजा के संग संग रेडियो फिजा के इस प्यारे से स्टूडियो से इस माइक के उस पार फयाज रविश आपके आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं जनाब? सारे कैसे हैं? ठीक हैं? आप सब की खैरियत मैं एक मतलूब चाहता हूँ। ये वो वाली लाइनें हुआ करती हैं जो कि पुराने ज़माने में ख़तों में जो है वो इस्तेमाल किया जा की जाती थी और खैर खैरियत जो है वो दरियाफ्त की जाती थी। जनाब आपके मिजाज कैसे हैं? आप सारे आपको गुड मॉर्निंग और गुड वॉली, ये थोड़ी सी मॉर्निंग आगे चली गई है लेकिन ये है कि मॉर्निंग है आपके लिए। जनाब आपको ईदुल अज़हा की ढेरों ढेरों मुबारकें। जनाब आज का दिन बड़ा ख़ास किस्म का दिन जो है वो गुजर रहा है, ईद का चूंकि दूसरा दिन है, लेकिन आज का ये प्रोग्राम भी इस हवाले से बड़ा ख़ास है क्योंकि आज हम जनाब बात कर रहे हैं रेडियो फ़िज़ा की तारीख का सबसे मज़ेदार किस्म का प्रोग्राम है ये, तो जनाब तैयार रहें। तो जनाब रेडियो फ़िज़ा के संग संग रहें, रेडियो फ़िज़ा.co.uk यहाँ

जो एक किस्म की गर्मी जो दिन की है आपकी, क्योंकि टेम्परेचर आपका जो है वो 28-29 तक जा रहा है और सूरज और बादल जो है वो आंख मचोली खेल रहे हैं। और जनाब जहाँ पे जो आपने काम करने हैं वो कर गुजरिए, क्योंकि मौसम जो है वो आपके रास्ते में हायल नहीं होना चाहिए और ना ही होता है। आप हिम्मत वाले लोग हैं।

ओ जनाब, 28 मई 2026, और बड़ा प्यारा बड़ा मज़े का दिन आपके सामने है। और जनाब गुज़र रहा है, और टाइम गुज़रने के लिए हुआ करता है। और आपकी ईद का दिन चूँकि गुज़र चुका, दूसरा दिन आपको और आपकी फैमिली को और आपके साथ जुड़े जितने भी रिश्ते हैं उन सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। फ़ियाज़ रविश आपके साथ है। बकरा पार्टी प्रोग्राम का नाम है। ये स्पेशल ईद शोज़ हैं हमारे, जिनमें से उस सिलसिले की एक कड़ी ये भी प्रोग्राम है।

हाँ जी, तो ये जो ईद हुआ करती है वो कुर्बानी के हवाले से हुआ करती है, और कुर्बानी जो है वो जानवरों की दी जाती है और जानवर कुर्बान किए जाते हैं, लेकिन जानवर की कुर्बानी के पीछे असल जो फ़लसफ़ा है उसको भी पहचानना चाहिए जनाब। घरों में जानवर आया करते हैं, बकरे आया करते हैं, बच्चों ने उन्हें नाम दिए होते हैं, और अमियों जो है वो छुरियाँ तेज़ कर रही होती हैं अपने उस गोश्त को थोड़ा पतला करने के लिए, छोटा करने के लिए, और अब्बा जी यूट्यूब पे कुर्बानी का तरीका सर्च कर रहे होते हैं। और ये है जनाब ईद का समा, क्योंकि यहाँ पे तो इस तरह से नहीं है, लेकिन ईद की ये भी रौनकें कहीं ना कहीं कायम हैं। तो जनाब फ़याज़ रविश आपके साथ 2 घंटे गुजारेगा, ईद की खुशियाँ जनाब, हंसी, और इसके अंदर जो है वो दिल छूने वाली एक कहानी आपको सुनाऊंगा, और उसके साथ एक ऐसा पैगाम जो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो बैठ जाएं, आराम से चाय बना लें अभी, और करते हैं शुरू बकरा पार्टी।

जनाब रेडियो फ़ज़ा डॉट सी ओ डॉट यू के तवसुत से जहाँ जहाँ पे मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ जहाँ पे चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, जनाब आप सुन रहे हैं, आपको आप सबको खुश आमदीद फ़याज़ की तरफ से। और जनाब क्या आप जानते हैं कि अगर हम कुर्बानी के हवाले से, जानवर के हवाले से बात करें, तो क्या आप जानते हैं कि बकरे की आँखें इस तरह बनी होती हैं कि वो तकरीबन 360 डिग्री देख सकता है एक जगह पर बग़ैर सर घुमाए। यानी बकरा कभी धोखा नहीं खाता और हम इंसान हम सामने वाली बात भी नहीं देख पाते।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजाना 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजाना 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

ये देखें, ये तो कुर्बानी का फ़लसफ़ा हो गया, कुर्बानी की ये जो ये एक तारीख चली आ रही है उसके मुताबिक ये चीज़ हो गई। लेकिन अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ कि कुर्बानी का जो तसव्वुर है ना, वो सिर्फ एक रिवायत नहीं है। हमारे नॉटिंगम में जो 7 रवायात के 8 रवायात के या जितने भी अदियान के मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर एक के यहाँ ये जो देने और ये जो छोड़ने का तसव्वुर है ना, वो कहीं ना कहीं कायम है। आप किसी भी मज़हब के हवाले से किसी को भी उठा के देख लें कि उनके उनके दरमियान, उनकी इल्हामी किताबों के अंदर या उनकी बड़ों की जो रिवायात है उनके अंदर, उनको जो कुर्बानी का एक पैगाम है वो दिया गया है। बस यही समझ लें कि उनके लिबास जो है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के हैं।

जी तो नौटिंगम वालों, उठ जाओ उठ जाओ, आज आपका दूसरा ईद का दिन है। और जनाब, दूसरे दिन के अंदर जो भी आपने प्लानिंग की हुई है, अगर आप अपने प्यारों से मिलने के लिए जा रहे हैं, अगर आप रोड्स पे हैं या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो बी केयरफुल, आपके प्यारे आपके साथ हैं जनाब। कानून को भी फॉलो कीजिए, वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं तो हैव अ सेफ ड्राइव, मैं आपको यही कहूँगा। और साथ उसके सुनते जाइए जनाब, रेडियो फ़ज़ा को सुनते जाइए साथ साथ।

जी, मुझे पता है कितने इस तरह के हैं जो कि रात को लेट तक जो है वो आगे पीछे जाते रहे हैं, फिरते रहे हैं, अपनी प्यारों को लेके जाते रहे हैं, गए थे कहीं, फिर लेट टाइम आए हैं तो उसके साथ ही फिर वो सो गए और अभी तक सो रहे हैं। और जनाब उठ जाइए, देखें सूरज कहाँ पे पहुँच आया है। और आपने आज के जो काम हैं जो आपने कल जब करने लगे थे तो आपने कहा था नहीं आज नहीं करने, कल कर लेंगे। जनाब कल जो आपने कहा था ना वो आज में तब्दील हो चुका है, उठ जाइए।

जी तो मेरे कितने दोस्त हैं वो मुझे बताया करते हैं ना अपने बच्चों के हवाले से कि जब वो किसी तरह का कुर्बानी का कोई जानवर लेके आते हैं, अगर वो कोई छोटा बकरा हो, छोटा जानवर हो, तो उसके साथ वो इस हद तक जो है ना वो एक उनसे उनसियत और प्यार बढ़ जाता है कि जब उसको कुर्बान करने के लिए लेके जाया जाता है तो वो बच्चे अक्सर रो दिया करते हैं। वो कहते हैं किधर लेके जा रहे हैं, तो जब उनको पता चलता है कि ये तो ज़िबा हो रहा है और ज़िबा का उनको जब पता चलता है तो फिर वो रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं और फिर जनाब वो बड़े भी थोड़े से मायूस से हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब देखें बच्चों का जो है वो उनसे उन जानवरों से प्यार जो है वो किस हद तक हो जाया करता है 2, 4, 6, 8, 10 दिनों के अंदर।

0: जी हाँ, तो जनाब आपके दिल का मौसम कैसा है? आपके बाहर का मौसम जो है वो तो गर्म हुआ चाहता है, आपकी रात जो है वो ठंडी हुआ करती है, लेकिन आपका जो दिन का टेम्परेचर है वो 30 तक जो है वो टच करना शुरू हो गया है जनाब। ये जो यूके के हवाले से जो गर्मी हुआ करती है ये बड़ी सख्त किस्म की हुआ करती है। हमारे जो बैक एंड पे जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो उसमें इतने हो चुके होते हैं, उनकी एक आदत सी बन चुकी होती है कि उनको उस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे जब धूप तेज़ होती है तो फिर भागे फिरते हैं लोग। तो जनाब ईद का दूसरा दिन, और कहीं पे अगर कुर्बानी के हवाले से कोई हिस्सा आपने डाला हुआ है और आप अपने उस गोश्त को लेने के लिए जा रहे हैं, और कहीं पे हो सकता है आपने ले लिया हो कहीं से और फिर उसको किसी को देने जा रहे हों, तो जनाब घर गुजरिए, आज का दिन जो है वो गुजरता जा रहा है। एक ब्रेक है जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे होती है इस हवाले से बात। सो स्टे ट्यून्ड और जनाब रेडियो फ़ज़ा को सुनते रहिए, क्योंकि अभी थोड़ा कुछ है आपके लिए।
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा? इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजान आईडी 7.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियां। फजान आईडी 7.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

जी तो फयाज रविश एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम बकरा पार्टी लेकर जनाब रेडियो फजा के संग संग आपका और मेरा ये साथ है जनाब। तीसरे चंक के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और तीसरे चंक में थोड़ी सी आपसे बातें करनी है इस हवाले से। म्यूज़िक तो साथ साथ चलता रहता है, आप अपने काम करते जाइए और रेडियो को सुनते जाइए। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि रेडियो जो है वो आज के ज़माने में एक बेस्ट चॉइस हो सकती है एंटरटेनमेंट के लिए। वो कैसे आप ही सोच रहे होंगे, वो ऐसे कि हम जो है वो स्क्रीन टाइम के अंदर इतना खो चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नज़र आता है और मोबाइल का एक उसकी एडिक्शन इस तरह की हो चुकी है कि हम चाहते हैं हर टाइम उसको अपने सामने रखें और जब उसको थोड़ी देर के लिए हम कहीं पे छोड़ देते हैं तो दिल उसकी तरफ माइल होता रहता है। हम यही सोचते हैं कि पता नहीं क्या कुछ हमसे खो गया है और जब वो दोबारा हाथ में आता है तो हमें दुनिया की होश नहीं रहती, हमें अपने प्यारों की अपने साथ बैठे हुओं की होश नहीं रहती। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का जो है फिनोमेना हो चुका है आज के इस दौर का। उसके साथ अगर हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास लैपटॉप हैं, हमारे पास LCDs हैं, हम इन्हीं को ये जो स्क्रीन टाइम है उनको देख देख के हमारे अंदर एक जिस्मानी तौर पे भी और सबसे बड़ी चीज़ के हमारी जो जहनी तौर पे एक सेहत जो है वो मुतासर हो रही है, उससे ज़माना सारा उस चीज़ का गवाह है कि हमें एक ऐसा नफसा नफसी के अंदर वो अपना है कि हम जिस काम के अंदर मौजूद होते हैं हम उसको उसके ऊपर हमारा जहन नहीं होता, जबकि जो करने वाला आगे आने वाला जो काम है इन फ्यूचर करने वाला जो करीब में करने वाला काम है हम उसके अंदर होते हैं और उसके अंदर होते हुए जब जहन उस तरफ होता है तो जो काम हम कर रहे होते हैं वो हमसे सही नहीं हो पाता। तो जनाब प्यारा सा दिन गुजर रहा है और ये दिन बड़ा अच्छा हुआ करता है। किस हवाले से अच्छा हुआ करता है? हाँ जी, आप शायद ठीक कह रहे हैं, खाने के हवाले से जो घरों में से जो खुशबुएं निकल रही होती हैं, जो आपको होटल्स में या कहीं पार्क में आप गए हुए हैं तो आपने अपने साथ कहीं ना कहीं खाने का कुछ सामान लिया हुआ है जनाब, उसकी खुशबू हर तरफ बिखरी हुई है, अपने आगे पीछे देखिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये जो हम जो लिटरिंग वाला काम करते हैं ना कि कहीं पे अगर हम जाते हैं और जो चीज़ें आगे पीछे हम फेंक दिया करते हैं, ये बड़ी अजीब किस्म की बात हुआ करती है। जब हम ये देखते हैं कि हम अपना जो किया हुआ है ना, चाहे आप घूमने गए हुए हैं, चाहे किसी पार्क में हैं, चाहे कहीं आगे पीछे हैं, तो आप अपनी जितनी चीज़ें साथ लेके गए हैं उनको अच्छे तरीके से डिस्पोज ऑफ कीजिए ताकि वो उस माहौल के अंदर जो है वो उसमें नुकसान ना हो सके। जब आप अपने पीछे जो है जो हमारे जो पाकिस्तान है, जो इंडिया है, जो आगे पीछे जितने हमारे इस तरह के देश हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ का तो अल्लाह ही हाफिज़ हुआ करता है इन दिनों में। आगे पीछे आलाइशें जिधर भी देखें और जनाब गलियों में और रोड्स के ऊपर जो है वो इस तरह से खून पड़ा होता है और अजीब तरह की है कि हमारी जो इस हवाले से जो हुकूमतें हैं वो कुछ भी नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इस चीज़ की सहूलत है कि हम वो वाले मनाजर नहीं देखते, लेकिन हमें हमारे ऊपर है जहाँ तक हो सके हमें इस सफाई के हवाले से इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमें देख रहे हैं, जब वो हमें देखेंगे और अपने इन्वायरमेंट को उस हवाले से थोड़ा सा जब हमें इस चीज़ का ख्याल होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ उस एनवायरनमेंट को ही नीट एंड क्लीन नहीं कर रहे होते, हम उन बच्चों की जो एक ट्रेनिंग है उसमें भी अपनी जो है ना वो बता रहे होते हैं उनको कि किस तरह से आपने अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना है। तो जनाब मुझे इस चीज़ का ख्याल आ रहा है कि आज जब मैं आपसे ये मुखातिब हूँ तो जो फिज़ा है उसमें अजीब तरह की एक महक है, एक खुशबू जो हमें सीधी हमारे बचपन में ले जाती है। गलियों में बच्चों का शोर और पीछे मंडियों की रौनक हुआ करती थी और वो जानवरों से मासूम सी मोहब्बत और माँ के हाथ के बने हुए पकवानों की खुशबू। जी हाँ, ईद कुर्बान हमारे बिल्कुल करीब से होके अब गुजर जाया करती है, वो पता नहीं क्यों जैसे हम
बड़े हो चुके हैं शायद, या हम उस तरह से जो है वो उसको सेलिब्रेट शायद नहीं कर पाते, क्योंकि इंसान का जो मिजाज है वो बदलते वक्त के साथ बदल जाया करता है। वो जो बचपन हुआ करता है वो जब गुजर जाया करता है तो हम उस बचपन को वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि अपने वो जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ उस तरीके से ट्रीट करें, उनसे इस तरीके से सलूक करें कि आपको अपना खोया हुआ जो बचपन है वो थोड़ी देर के लिए आपके पास आता हुआ महसूस हो।

की सीध खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस सीध हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस सीध को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

फिर रातों को जाकर अपने बकरे या बैल की चौकीदारी करना, वो जो एक दिली लगाव होता था ना, उसकी बात ही कुछ और थी। और अब ज़रा यहाँ की ज़िंदगी देखिए, हम नॉटिंगम में बैठे हैं, फ़ोन उठाते हैं, वेबसाइट खोलते हैं या किसी लोकल फार्म या लोकल शॉप पर जाकर कहते हैं भाई एक हिस्सा या एक बकरा बुक कर दो। ईद के दिन जनाब नीट एंड क्लीन किस्म की पैकिंग में जो है वो गोश्त घर पहुंच जाया करता है, और कोई झंझट नहीं, कोई उसमें मुश्किल नहीं हमारे लिए, कोई चारा खिलाने की हमें कोई किसी तरह की टेंशन नहीं। सहूलत तो बहुत है, लेकिन सच बताइए क्या वो जो बचपन का जोशो खरोश हुआ करता था, वो जो एक रौनक थी, उसे हम मिस करते हैं कहीं? यहाँ यूके में पैदा होने वाले हमारे बच्चे तो शायद उस जो मंडी का जादू हुआ करता था ना, उससे तो बिल्कुल ही अनजान हैं।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: जी तो जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो आपसे होती है जहां से हमने बात को तोड़ा है वहीं को वहीं से उसको जोड़ते हैं। हमारे संग संग रहिए।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े
3: पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे रहे। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ। सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जी तो वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं जनाब, ब्रेक से वापस आए हैं। तो मेरे ख्याल में बात को वहीं से जोड़ते हैं जहां से उसको तोड़ा था। जनाब आप सुन रहे हैं रेडियो फ़िज़ा 97.1 FM और ये खसूसी ईद का जो शो है बकरा पार्टी, जो कि आप फ़याज़ रविश के साथ सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में आप बात हो जानी चाहिए उस चीज़ की जिसके बग़ैर ईद कुर्बान का जो तसव्वुर है वो अधूरा सा है, यानी खाना और बारबेक्यू। ओ जनाब, यूके में ईद कुर्बान पर मौसम का सबसे बड़ा किरदार हुआ करता है, और अगर तो नॉटिंगम का मौसम मेहरबान हो, जैसे कि हमारा जो है वो थोड़ा सा लेवल अप पे गया है और थोड़ी सी धूप जो है ना वो जब निकलती है तो फिर आपको पता है कि आपके साथ क्या करती है। तो हर घर के जो गार्डन हुआ करते हैं ना, वहाँ पे तिक्कों और कबाबों की जो खुशबू हुआ करती है और जो धुआं सा उठता दिखाई देता है ना, और अगर नॉटिंगम के रिवायती जो बादल हैं अगर कहीं से बरस पड़े तो फिर सारा प्लान जो है वो गार्डन के हवाले से वो तो शिफ्ट होकर किचन के हवाले से चला जाया करता है और जनाब इनडोर ग्रिल तक आ जाया करता है। मगर बरादरी का जो जोश हुआ करता है ना वो कम नहीं होता। और जनाब मुझे इस चीज़ का मालूम है कि नॉटिंगम की हमारी जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो भाभियां हैं, वो ईद के मेन्यू की जो तैयारियां हैं वो जनाब उरूज पे होंगी। और पहले दिन तो चलें कलेजी हो गई, दूसरे दिन मटन कड़ाही के साथ, और तीसरे दिन जो है वो टिक्का पार्टी हुआ करती है। मगर जनाब एक बात जो है जो हाज़रीन के लिए, जो जो जो सुनने वालों के लिए, जो सामईन के लिए कहता चलूँ, आपके दिल की तमन्ना यही है कि इस गोश्त के जो बंडल बनाने और फ्रीज़र भरने के दौड़ में जो है ना, ज़रा अपने उन बहन भाइयों को मत भूलिएगा जो यहाँ स्टूडेंट्स बनकर आए हुए हैं या हॉस्टल्स में अकेले हैं, या वो बुज़ुर्ग जो घरों में अकेले हैं। ईद की जो असल बकरा पार्टी है ना, तब बनती है जब आप किसी अकेले रहने वाले को अपने गार्डन के बारबेक्यू पर मदहु करते हैं और उसे घर जैसा प्यार देते हैं। यही तो हमारी कम्युनिटी की खूबसूरती है जनाब।

जी हाँ जनाब, मेरे प्यारे सुनने वालों, ईद तो आ जाती है, कैलेंडर की तारीखें तो बदल जाती हैं और नॉटिंगम के बाज़ारों में जो रौनक भी लग जाया करती है, नए कपड़े भी और जनाब अलमारियों में से अगर पड़े हैं तो निकल आते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या अपनों के बगैर भी कभी ईद ईद होती है? जनाब प्रदेश की ये जो ज़िंदगी है जहाँ हम दिन रात घड़ी की सुइयों पर भागते हैं, ईद का ये दिन हमें एक लम्हे के लिए रोक के कहता है कि ये आपके हैं और आप उनके हैं। जनाब आप उनका दिल हुआ करते हैं और वो आपका दिल हुआ करते हैं, इन पुरानी गलियों में, उस बूढ़ी माँ की हिचकियों में और उन दोस्तों के कहकों में, कहीं कुछ छूट गया है।

जी तो जनाब, बात हो रही थी ईद के खानों की और मेहमानों की। कहते हैं ईद कुर्बान पर हमने जो अक्सर देखा है वो मर्दों के हवाले से तो यही है कि उनको गोश्त की तकसीम का जो है ना वो उसके लिए बाहर दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। लेकिन घर की खवातीन के लिए ईद का मतलब होता है किचन की ड्यूटी। ईद की सुबह जो है ना वो पहली जो कलेजी फ्राई करती है ना वो वहाँ से लेकर जो मटन कढ़ाई है, बीफ पुलाव है और रात के जनाब बारबेक्यू तक किचन का जो चूल्हा है जैसे आराम करना भूल जाया करता है। और फिर जनाब यूके के इस मौसम में जहाँ किचन की खिड़की से बाहर ठंडी हवा चल रही हो और अंदर कढ़ाई की भुनी हुई खुशबू और अदरक लहसुन का तड़का लग रहा हो, हाय हाय, भूख तो ना लगने वालों को भी लग जाया करती है।

लेकिन जनाब जो खाने का असल मज़ा तब नहीं आता जब तक घर में मेहमानों का दौड़ जो है और मेहमानों की और शोर ना हो। पाकिस्तान में तो या पीछे इंडिया में हम हों तो हमारे जो बड़े हैं जहाँ पे बड़े हमारे घर हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो दरवाज़े हमारे तो ईद के दिन खुले हुआ करते हैं, जो आया उसे बिठा लिया। यहाँ नॉटिंघम में थोड़ा सिस्टम अलग है, यहाँ पहले फ़ोन करके पूछा जाता है भाई आप ईद के दिन पहले दिन जो है वो फ्री हैं या दूसरे दिन फ्री हैं ताकि मैं आपकी तरफ आ जाऊं। लेकिन जब मेहमान आ जाते हैं तो फिर वही देसी रंग जमता है, ड्राइंग रूम में सोफे जो है वो कम पड़ जाते हैं और कालीन पर बैठकर जनाब कह कहे लग रहे होते हैं, और हमारी रिवायती जो मेहमान नवाजी का जो होता है ना वो तो कोई मुकाबला ही नहीं ना कर सकता। जो मेहमान का पेट भरा भी हो तो हमारी माएँ बहनें जो होती हैं वो ज़बरदस्ती प्लेट में रख कर कुछ ना कुछ दे दिया करती हैं और कहा करती हैं अरे एक बोटी तो और लेनी पड़ेगी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे।

और जब इस तरह की सूरत हाल हुआ करती है तो मेहमान बेचारा जो है वो दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि काश मैं आज थोड़ी लूज फिटिंग जो है ना वो कपड़े पहन कर आता ताकि बहुत ज़्यादा इनके साथ बैठ के खा सकता। लेकिन जनाब खाने में एहतियात कीजिए और ज़रूर हिफ्ज़ान सेहत जो है उसका ख्याल रखिए, क्योंकि आपने अभी काम करने हैं बड़े।

जनाब बिल्कुल इसी तरह है। कहते हैं कि आसमान पर चांद तो रोज ही निकला करता है, लेकिन जो सहर, जो खूबसूरती और जो कशिश ईद के चांद की हुआ करती है ना, वो साल भर दोबारा कभी नहीं मिलती।

तो जनाब कहा जाता है कि जो प्रदेश की ईद हुआ करती है ना, ये बड़ी उदास हुआ करती है, लेकिन अगर दिल में किसी प्यारे की याद हो, किसी के चेहरे का तसव्वुर हो, तो नॉटिंघम की ये ठंडी रात और ठंडा दिन जो है, जो आपके लिए है जनाब, उसकी खुशबू जो है ना, वो उससे महक जाया करती है। जनाब ईद तो असल नाम ही अपनों के दीदार का हुआ करता है।

वक्त का पता ही नहीं चलता और वक्त धीरे से हमारे पास से गुजर जाया करता है। वक्त के साथ कदमों से कदम मिला के चलिए और कभी भी आप जो है ना वो नाकाम नहीं होंगे जनाब। इसी तरह से है, हम हर साल लाखों रुपए खर्च करके खूबसूरत से खूबसूरत जानवर लाते हैं और फिर उनकी कुर्बानी करते हैं और जनाब छुरी चलती है और समझते हैं क्या कदा हो गया। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि अल्लाह को ना तो उस गोश्त की ज़रूरत है और ना उस खून की, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नीयत देखी जाती है। और जनाब सच्ची बात बताऊं कि जानवर के गले पर छुरी चलाना तो बहुत आसान है, चंद मिनटों का काम है। असल मुश्किल तो वहाँ शुरू होती है जहाँ हमें अपने अंदर के जानवर पर छुरी चलानी पड़ती है, क्योंकि जो अना है, जो नफ़रत है और जो नाजायज़ ख्वाहिशात की कुर्बानी है ना, यही असल कुर्बानी है।

तो जनाब हमें सोचना चाहिए इस हवाले से कि अगर हमने बकरा तो कुर्बान कर दिया लेकिन हमारे अंदर जो अना है, जो ईगो का पहाड़ एक हमने बना लिया है, वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहा और हमने जानवर तो ज़िबा कर दिया लेकिन अपने सगे भाई, अपने किसी दोस्त या पड़ोसी के लिए जो नफ़रत दिल में है ना, वो हमने पाल के रखी हुई है। मैं कई दफ़ा सोचा करता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें कितने ऐसे लोग भी मिला करते हैं जो कि कहते हैं कि जनाब मेरे मोबाइल में भाई का नंबर नहीं है। वो पता नहीं कितने कितने उन्होंने किस किस के मोबाइल नंबर रखे होते हैं लेकिन भाई का जो है ना वो उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा करना ठीक है आपके ख्याल से? जनाब माल तो खर्च कर दिया जाता है लेकिन अपनी अपनी जो अपनी ख्वाहिशात हैं ना, अगर उस पर भी काबू पा लिया जाए तो दूसरों का जो हक है ना मारने वाला, वो कुछ ख्वाहिशात इस तरह की होती हैं जो कि हमें उस पर उकसाती हैं, तो फिर हमारी उस कुर्बानी की जो हकीकत है वो क्या रह जाती है? ये ईद कुर्बान सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि ये एक अपने आप के साथ जो है ना एक अहद बांधने वाली बात है। ये एक काया पलट देने वाला अमल है। ये हमें सिखाती है कि खुदा की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्यारी और पसंदीदा चीज़ को छोड़ देना ही असल बंदगी है। और आज के दौर में इंसान को सबसे प्यारी अपनी ज़िद, अपनी अना और अपनी जो अना परस्ती है ना, वो हुआ करती है।

मेरा नॉटिंगम का ये पूरा जो परिवार है जो इस वक्त रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM को सुन रहा है, आइए इस ईद पर एक ये अहद करते हैं कि जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपने अंदर की उस एक जो बुराई है ना उसको भी हमेशा हमेशा के लिए कुर्बान कर देते हैं। आप बड़े अच्छे और बड़े आली ज़र्फ किस्म के लोग हैं। हम जो इंसान हुआ करता है ना, जो हमें इंसान से दूर और खुदा से भी फिर उसके साथ दूर कर दिया करता है, किसी को माफ़ कर देते हैं और अपनी ज़िद को जो है ना वो मिटा देते हैं, तो खुदा भी आपके करीब आ जाया करता है।

0: तो जनाब मेरे प्यारे सुनने वालों, वक्त की सुइयां जो है वो बड़ी तेज़ी से घूमती हैं और अब वक्त आ गया है कि आपसे इजाज़त लूँ। रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM पर बकरा पार्टी आपने सुना प्रोग्राम मेरे तवसुत से, और जनाब फ़याज़ रविश मुझे कहते हैं, और ईद की ये खसूसी जो ट्रांसमिशन है वो आगे बढ़ रही है ऐसे ही, और आपके साथ हैं हम, और उसके बाद आने वाले जो आरजेज़ हैं वो आपके साथ होंगे। आज के इस प्रोग्राम के सफ़र में हमने जो यादों के थोड़े से वर्क उल्टे हैं, हम नॉटिंगम की सड़कों से निकलकर पीछे देश की गलियों में भी गए हैं जहां हमारा बचपन गुजरा। हमने जनाब किशन की रौनकों और मेहमानों के कहकहों का भी जिक्र किया, किसी चांद चेहरे की याद में दिल को उदास भी किया, और सबसे बढ़कर हमने अपने अंदर झांक कर देखा कि अना, नफरत और जिद की जो कुर्बानी हुआ करती है ना, वो असल कुर्बानी होती है। जनाब इस ईद पे अपने जो फ्रीज़र है ना उनको भरने से पहले मुझे सोचना चाहिए, किसी सफ़ेद पोश का पेट भरना जो है वो भूलना नहीं चाहिए, नए जो जोड़े पहनने से पहले और अपने किसी नाराज़ अपने को जो गले लगाना है ना वो भूलना नहीं चाहिए। और जनाब यूके की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में और जो बैठी दूर हमारी माएँ हैं, हमारे बाप हैं, या उन अपनों को जो तवील वीडियो कॉल करना भूलते नहीं हैं, उनको भी अपने साथ रखिए। जनाब मुझे दुआओं में याद रखिए, और आप जिंदा रहिए और शाद रहिए और आबाद रहिए, और रेडियो फ़िज़ा के संग संग रहिए और प्रोग्राम सुनते रहिए, आपके लिए बड़ा मज़ा आने वाला है।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440 36 3063 या 07 4210777999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
7: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है। मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैप।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: टुगेदर इन फेथ एंड जॉय, ईद अल अदा मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम संत भी समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं तेरा मेरा बकरा और आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। सो मेरा आपका साथ रहेगा, ठीक हो ठीक। 2 बजे तक हमेशा की तरह प्रोग्राम लेकर आती हूँ आप सबके लिए, बट अभी जो है स्पेशल ईद का प्रोग्राम लेकर आ गया। सो बताइएगा कि ईद का दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है। मेरा अभी ही अच्छा गुजरना शुरू हुआ होगा क्योंकि मैं अभी आपके साथ गपशप लगाऊंगी, आपके साथ मस्तियां करूंगी, क्योंकि प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मीडिया और आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट। लेकिन ज़्यादा इंटरटेनमेंट जो आज जो है वो हम इन दिनों में रखेंगे। आप कोई ऐसी बात मुझे पहुँचाना चाहें जो कल हुई हो, जब बहुत ऐसे हादसा हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसे एक दो हुए हैं, बट मैं आपको बताऊंगी प्रोग्राम में। ऐसा ऐसा आप अपना साथ दे सकते हैं 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल भी सर्च कर सकते हैं radiofuzza.co.uk के आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी और राज्य का प्रोग्राम सुनने की कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको मिल जाएगी। ईद के रिलेटेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप स्टोर से radiofuzza 97.1 FM के नाम से। लेकिन उसी के साथ साथ प्रोग्राम में अपनी आवाज़ भी आपको सुनाएंगे, बट ट्रैक भी प्ले किए जाएंगे। उम्मीद करूंगी कि आपको हमारा साथ अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को, मिलते हैं इसके उस पार। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड टैप।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजाना 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजाना 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हों और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड एप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड एप।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: The festival of sacrifice and devotion is here. Eid ul Adha Mubarak from all of us at Faza 97.1 FM and app.

बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: Eid al-Adha. May your heart be filled with happiness and your home with peace. Eid Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
5: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: इस ईद खुशियों को करें
16: ईद के रंग मोहब्बतों के संग। फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

मुशाहे जिंदगी भी यही है, खुशियों और उदासियों के एक साथ चलते रहना। समय दुलाजा में सिर्फ जानवर कुर्बान करना नहीं सिखाती, बल्कि अपनी आना नफरत हसद और तकबर को कुर्बान करना भी सिखाती है। अगर कुर्बानी के बाद भी दिल में नफरत बाकी रहे तो कुर्बानी सिर्फ रस्म रह जाती है। आज अपने आसपास उन लोगों को याद कीजिए जो शायद मुस्कुरा तो रहे हैं मगर अंदर से टूटे हुए हैं।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ। इस ईद बस एक ही नाम, फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: सेलिब्रेट सैक्रिफाइस, स्प्रेड हैप्पीनेस। ईद मुबारक फ्रॉम रेडियो फजा 97.1 FM।

बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: मिलावे।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरी बहुत बहुत मुबारक हो।
12: कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए, फजा 97.1 FM के साथ।
13: छोटू
0: छोटे भाई यार, तुमसे ज्यादा ही थी तो हमने जमा कर

0: जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती। ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।
1: ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

यार हो जाएगी नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटे, आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड एप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड एप।

0: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड ऐप, जहाँ हर पल है ईद का रंग।
1: The festival of sacrifice and devotion is here. Eid ul Adha Mubarak from all of us at Faza 97.1 FM and app.

0: solutions. Your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Carefire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Carefire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
6: Of blessings to you and your family, Radio Fuzz 97.1 FM.

0: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।
1: उत्सव घर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: ईद अल अधा, मे योर हार्ट बी।
16: ईद के रंग मोहब्बतों के संग, फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
2: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?

0: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
1: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाहि मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Celebrate sacrifice, spread happiness. Eid Mubarak from Radio Fazza 97.1 FM.

0: it's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
5: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
5: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
5: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
7: टुगेदर इन फेथ एंड जॉय, ईद अल अदा मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड, नॉटिंघम, या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है?

0: यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना,
1: जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रापता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
7: hayatweddings.co.uk।
8: Eid al-Adha, may your heart be filled with happiness and your home with peace. Eid Mubarak from Radio Faza 97.1 FM.

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटें। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इसी जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।

में यार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

ईद के रंग मोहब्बतों के संग फजा 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजा 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

नॉटिंगम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुन्नते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

कुर्बानी सिर्फ एक रिवायत नहीं, एक जज्बा है, मोहब्बत बांटने का और अपनों के करीब आने का। खुशियों को महसूस कीजिए और हर लम्हा खास बनाइए। फजा 97.1 FM के साथ।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती। ये है ईद उल अधा, जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फजा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड एप ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड एप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods 152.

0: Huntingdale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106, Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, jo naam hai Mayarka.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी वाइब भी।
5: ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Eid al-Adha Mubarak. May your days be filled with peace, joy and blessings. Radio Faza 97.1 FM.

0: बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।
1: उत्सव घर आनंदमय हार्ट वार्मिंग आनंद एकता।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440.

0: 0763063 or 07421077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
1: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
2: कुर्बानी, मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बे के साथ ईद उल अज़हा मनाएं. रेडियो फिजा की जानिब से आपको ईद मुबारक.
3: इस ईद खुशियों को करें दुगना. हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास. तो इसे जुड़े रहिए फजा 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज यही है.

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि यह है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

यार हो जाएगी नॉटिंघम। बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ। सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary special mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: तैयार हो जाइए नॉटिंगम,
16: ईद के रंग मोहब्बतों के संग। फजान 97.1 FM लेकर आया तमाम सुनती सवातों के लिए छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। फजान 97.1 FM की टीम की जानिब से तमाम सुनती सवातों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो।

इस ईद खुशियों का पैगाम सिर्फ कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि ये है अपनों के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, मोहब्बत बांटने का दिन और दिलों को करीब लाने का मौका। इस ईद हम लाए हैं आपके लिए खास ट्रांसमिशन, ताकि आपकी खुशियाँ हो और भी खास। तो आइए इस ईद को बनाएं यादगार, फजा 97.1 FM के साथ।

नॉटिंघम की ईद की प्यारी रौनकें। अपनों के साथ मिलकर खुशियां बांटिए और इस दिन को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब की तरफ से आपको ईद मुबारक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Centre at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: तैयार हो जाइए नॉटिंघम, बकरी की रौनकें और बारबेक्यू की खुशबू अब होगी हर तरफ, सुनते इब्राहिमी की पैरवी, नए कपड़े और अपनों की मोहब्बत, यही तो है हमारी ईद का असल रंग। तो मुस्कुराइए, खुशियाँ बांटिए और इस त्योहार को यादगार बनाइए। फजा 97.1 FM एंड डैब लाया है आपके लिए ईद के खास रंग। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक।

जब नियत हो साफ तो कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये है ईद उल अधा जहाँ हर हिस्सा एक कहानी बन जाता है। फसा 97.1 FM के साथ और अपनों के साथ खुशियाँ बांटें। आप सबको ईद उल अधा मुबारक।

ईद उल अधा की रौनकें, खुशियों की बहार, कुर्बानी का जज्बा, मोहब्बतों का इजहार और इन सब के साथ आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड डैब ईद स्पेशल शोज, मजेदार बातें और लाजवाब म्यूजिक के साथ इस ईद बस एक ही नाम फजा 97.1 FM एंड डैब।

ईद उल अधा की खुशियाँ, कुर्बानी का जज्बा, रहिए हमारे साथ फजा 97.1 FM एंड डेब, जहाँ हर पल है ईद का रंग।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: सेलिब्रेट सैक्रिफाइस, स्प्रेड हैप्पीनेस। ईद मुबारक फ्रॉम रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रब्ता

0: करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299779 और विजिट अस एट
1: hayatweddings.co.uk।
2: बड़ी ईद की बड़ी खुशी के मौका पर कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं बल्कि अपनी अना, गुरूर और नफरतों की भी कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब पे सुनेंगे आप, जहां होगी दिल को छू लेने वाली बातें और दिल के जज्बात। सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

बड़ी ईद है, दिल बड़ा कीजिए, नफरतें मिटाइए, मोहब्बतें आम कीजिए। फजा 97.1 FM एंड डैब का भी यही पैगाम है, सुनते रहिए फजा 97.1 FM एंड डैब।

इस बार पहले ख्वाहिशात की कुर्बानी, फिर जानवर की कुर्बानी, मोहब्बत और हमदर्दी बांटे। फजा 97.1 FM एंड डैप के संग संग आपको ईद उल अजहा मुबारक।

इस ईद खुशियों को करें दुगना, हर मुस्कुराहट हो और भी प्यारी, जहां हर लम्हा बने खास। तो इस ईद जुड़े रहिए फजल 97.1 FM के साथ, क्योंकि खुशियों की असल आवाज़ यही है।